0: That was Visiting by Tombstones.
1: If you're a local musician and you want your music heard across the top of the South, contact us through our website, freshfm.net, or email local@freshfm.net. Sounds local.
2: Multicultural Nelson Tasman's Kai and Korero will be held at Community House at Dex Reserve, Motueka, on Sunday the 21st of June, which is winter solstice. It starts at 10 a.m. and finishes at 1 p.m. Cost is $25 per person. Pre-registration is essential. Contact Cez Fife on 022 300 8896 for registration details.
3: नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विनीता चंद्रा आपके साथ आपके लिए एक नया कार्यक्रम लेकर आ पहुंची हूं फ्रेश एफएम पर। दोस्तों, मेरे कार्यक्रम का नाम है विमेन्स वर्ल्ड, यानी महिला जगत। यहां हम महिलाओं के जीवन से जुड़ी खास बातें करेंगे और सुनेंगे उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी बॉलीवुड म्यूजिक। तो बने रहिए मेरे साथ शनिवार शाम 7 बजे। मैं विनीता चंद्रा और आप सुन रहे हैं फ्रेश एफएम।

0: Are you struggling and not sure where to turn? Citizens Advice Bureau Nelson Tasman offers free, confidential and independent information and advice to everyone. We can help you understand your rights, explore your options and connect you with the services you need. Visit us in Notawaka Library on Thursdays 9:30am to 1pm. You can also call or contact us online. Whether your question is big or small, we're here to help. Not sure? Ask us.
1: नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विनीता चंद्रा आपके साथ आपके लिए एक नया कार्यक्रम लेकर आ पहुंची हूं फ्रेश एफएम पर। दोस्तों, मेरे कार्यक्रम का नाम है विमेन्स वर्ल्ड, यानी महिला जगत। यहां हम महिलाओं के जीवन से जुड़ी खास बातें करेंगे और सुनेंगे उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी बॉलीवुड म्यूजिक। तो बने रहिए मेरे साथ शनिवार शाम 7 बजे। मैं विनीता चंद्रा और आप सुन रहे हैं फ्रेश एफएम।